भगत नहीं उपजय ताते रविदास उदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभायमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुरु दे अमृत बचना दा आप जी ने कीर्तन सरवण कीता है। जो पिछले दिना तो भगत रविदास जी महाराज उन्हां दे जो गुरु ग्रंथ साहिब अंदर अमृत शब्द बोल ने उस दी विचार करन दा आपां यतन कीता है। राग गौड़ी अंदर भगत साहिब दी अष्टपदी नाल राग दी और भगत बाणी दी संपन्नता हुंदी है। कल आपां विचार कीती सी कि भगत रविदास जी ने शास्त्रां दे दसे हुए कर्म कांड करन वाले विद्वान पंडित वीरां नूं ए पुछया कि तुसी करन योग ते ना करन योग, बिद कर्म ते निखेद कर्म उन्हां दी चर्चा करी जा रहे हो। सारी जिंदगी केवल बाहर दे कर्मां दी गल कर रहे हो पर अपने अंदर दी ते भव सागर नू तरन दा तुहाडे कोल वसीला की है? आपे पढ़दे हो, आपे खंडन करदे हो, अपने ग्रंथ उत्ते आप ही संस्था बना के बैठे हो ते जिन्नी देर तक इंसान दे अंदर संस्था है ओ शक वाला अंदर किवें पार हो सकेगा? नाल फिर एक बचन खोर कीता, कहन लगे जिस दियां गल्लां आपां करने पए आं उस नाल भी गल करन दा यतन करो। फिर भगत साहिब ने कल उपदेश कीता सी, कहन लगे जिवें सूरज चढ़े ते रात दा हनेरा चला जांदा है, इह सारी दुनिया नूं पता है कि जदों चानण आएगा अंधकार चला जाएगा। कहिंदे जदों पारत तांबे नूं छू जाए ते सोना खुंदिया देरी नहीं लगती, ते जदों परम परस इहदा अर्थ सब तो वड्डा पारस सम्राट गुरु, जदों सम्राट पारस गुरु किसे दे अंदर नूं छूंदा है ते भगत रविदास साहिब महाराज कह रहे सन कि सच एवे कि उस दा ओ मन जिहड़ा वासनावां विच प्रवृत्त है ओ मन उल्ट जांदा है ते अपने अंतर आत्मे विच अभेद हो जांदा है। ते अगे अज ओ कह रहे ने जिहड़ा मन दुनिया दे रस विच प्रवृत्त सी जदों गुरु दी छू मिली ओही मन जिहड़ा परमात्मा दे नाम दे रस विच मगन हो गया। आओ इस विचार नूं निर्धारित समय विच रह के आपां विचारन दा यतन करांगे। आप जी बख्शो आशीष, प्यार अदब दे नाल कोई भी रचना वांझी ना रहे, आशीष बख्श दे कोई उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश

0: से अरनम तक कोई राजा राणा, इत्थे अरनम तक कोई राजा राणा।
1: ओ एक दिन वांगे मुसाफरा तोर सब ले जाना, ओ एक दिन वांगे मुसाफरा तोर

फिर किसी गुरमुख प्यारे का मेल होता है, वो मिलता वो फिर गुरु नूं मिला देता सो सतना कोल कमाई किस मित्र बचोले जय मिल कंत पछाणा।

कीर्तन करते हैं। राणा साहब वाले महापुरुष कीर्तन करते हैं। बाबा नंद सिंह कोल बैठे कीर्तन सुन रहे हैं। आज महापुरुखों का संग होया है। दर्शन होए, संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह बड़े खुश ने। संगत दे भी दर्शन हो रहे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के भी दर्शन हो रहे और गुरु के प्यारियां के भी दर्शन हो रहे। बड़े खुश ने।

जब लग टुटे ना ही मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे तां का युग मह धर्मा। जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की। मन जो जो हो ग्रहाओ नाम तन जिस जन कै पाले। सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत भय दर्श पेखे माथे परों रवाल रस।

सुगर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां, अपनी युक्त खिलावे भोजन, अपनी युक्त खिलावे सर्ब सुख भोग रस देवे, मन ही नाल समावे।

दयाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भव निध पार उतारी रहाओ तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारी जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारी नासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिन सना कतहु जात सतगुर पूरै कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनातरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी साकत की आवरदा जाए बिर

स्वामी यह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ जिसका साथ नहीं रख लिया पूर्ण प्रभ की भांति मेल लियो आपे सुखदाता नानक हर राखी पाती पलासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरह प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओह तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मरार सहाय हो दास कौ कर गह उद्रोह मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरा खसमाना कर आप नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तलासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद रहाओ जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवै तलासरी महला पंजवा औखी घड़ी ना देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राख है अपने को सास सास प्रतपाले प्रभ स्यों लाग रहे मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन बिलास भये साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अपागा चरण कमल जा कामण रांगियो अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस सीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा रहाऊ जह जह पेखो तह नारायण सगल कटा महतागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोट सूख विश्राम गोविंद दामोदर सिमरों दिन रैन नानक साध कुर्बान तलासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवह सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वास है संतन का।

स्वामी कोई ना पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की कोए गया तत छार। करन हार रखवाला हुआ जाका अंत ना पारा वार। नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवा घर नौवा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरन गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देव हो। दृष्ट प्रभ तारु हो कृपा कर तारु हो, पूजा गह कूप ते काड लेव हो। रहाओ काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दुखा तन शाद पूरे। प्रभ बिना आन ना राखन हारा, नाम सिमराव हो सरन सूरे। पतत उदारना जी जंत तारना, वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवा, हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो। नाम गोविंद का सदा लीजै, मिटह कमाणी पाप चिराणी। साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाउ राज जोगन बिसरंत हर माया, महा दुख इहो महात कह। आस प्यास रमन हर कीर्तन, इहो पदार्थ भागवंत लह। सरन समरथ अकथ अगोचरा, पतत उदारन नाम तेरा। अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवा घर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। रहाउ बड़े भाग पेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापे, सोग अगन तिस जन ना व्यापे। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। पर तन दुख किस पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवै नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ सरनाई। तनासरी महला पंजवा, तृप्त भई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम त्याया। जीवन हर जप साध संग रहाउ। अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए, अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण त्याया, हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवा, गुर के चरण जी का निस्तारा। समुंद सागर जिन खिन मह तारा। रहाउ कोई हुआ क्रम रात कोई तीर्थ नाया। दासी हर का नाम ते आया, बंधन काटन हार स्वामी। जन नानक सिमरै अंतर जामी। तनासरी महला।

बंद हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद

वास बस्त है। मुकरमाही जैसे शाही तैसे ही हर बसी निरंतर, काट ही खोजो पाई बाहर पीतरे को जानो। यह गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीन, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवा साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन तां सिओ मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवा तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन जिहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके कंचन लो समानो, हरख सोग ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नार मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवा अब मैं कौन अपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै पौ निद पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच धरूं। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आमन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे। त्रे पवन जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ अधारी गुरमुख भगत सहज बीचारी। भगत वच्छल पै काटन हारे हो मैं मार मिले भगत हारे, अनक जतन कर काल संताई मरन लखाई मंडल मह आए। जन्म पदार्थ दुबदा खोवै आप ना कीनस भ्रम भ्रम रोवै, कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज धर्म धरनी तर टेक। जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचै पाच स्वरूप। तनासरी महला पहला सहज मिलै मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आमन जान। ठाकुर मह दास दास मह सोए जह देखा तह अवर ना कोई, गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाओ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मह मनुआ मन मह साचा सो साचा मिल साचे राचा।
सेवक प्रभ कै लागे पाए, सतगुर पूरा मिले मलाई, आप दिखावे आपे देखे, हाथ ना पतीजे ना बहु भेखे, कड़ भांडे जिने अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे, नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत भये उदासा, मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए, आचारा विचार शरीर, आद जगाद सहज मन धीर, पल पंकज महकोट उधारी,

ज्यों तुद पावै त्यों राखर जाए, नानक सहज पाए गुण गाए। पलासरी महला पंजवा घर छेवा अष्टपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो जो जूनी आयो तेह तेह उरजायो, मानस जन्म संजोग पाया। ताकि है ओट साध राखो दे कर हाथ, कर कृपा मिलो हर राया। अनक जन्म ब्रह्म थित नहीं पाई, करो सेवा गुर लागो चरण। गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई, रहाओ अनक अपाव करो माया को चित धरो। मेरी मेरी करत सद ही विहावै, कोई ऐसो रे पेटै संत। मेरी लाहै सगल चिंत, ठाकुर स्यों मेरा रंग लावै। पढ़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद, एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए, घर को ठाकुर एक तिल ना माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन इसनान। सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने, विवेकहीन देही धोए। कोई पाइय रे पुरख बधाता, पार ब्रह्म कै रंग राता। मेरे मन की दुर्मत मल खोए, कर्म धर्म जुगता निमुख ना हेत करता। गर्भ गर्भ पढ़ै कहीं ना लेखै, जिस भेटी है सफल मूरत करै सदा कीरत। गुर प्रसाद को नेत्रों हो पेखै, मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै। बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे तारी, कोई ऐसो रे सुखदाई। प्रभु की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी। सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माई, गुर कै शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद, सुख नानक लादे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दास पुरब सदा दशहरा। हौ नाम हर का सदा जा।

नित साच तीर्थ मजना साच न लागे मैल क्या मल धोई है गुण हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरै तारे उल्ट जोन ना आवे आप पार्थ परम ध्यानी साच साचे भावे आनंद अन दिन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर देखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मलाप पूरा नामणो गावे गावण हार शब्द सुहावणो सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावै बीणी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़ै सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एके वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तलासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुरु ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिरजी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सकै कोई आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सारे अवर ना कोई आया जायसी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप अपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह वाद वधंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखलाती सिर भारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिर जनहारा भगत सोह है दरबार शब्द सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणी पारस परसे पारस होए जां तेरे मन पाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्यासो आत क्यों डर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अन बिन नाम बखाणा करनी कार तुरो फरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी तनासरी संत महला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखियड़ा लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राते अवगुण बह बह रोसी तन जोबन आक की छाया बिरध भय बिन पुनिया नानक नाम बिना दोहागण
झूठी झूठ विछुनिया बूढ़ी घर गालियो गुर कै भाई चलो साचा नाम त्याए पावे सुख महलो हर नाम त्याए तां सुख पाए तेई अड़े दिन चारे निज कर जाए बह सच पाए अन दिन नाल प्यारे बिन भगती घर वासना होवी सुनियो हो लोक सवाए नानक सरसी तां फिर पाए राती साचै नाए फिर तन भावे तां फिर भावे नारी जियो रंग प्रीत मराती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी नाह प्यारी निव निव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस मह रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल भई मन मारी नानक साच वसी सुहागण फिर स्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहै नार जे फिर भावे जियो झूठै वैण।

संत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाइए जियो गुण गाए बिगसै सदा आनंदिन जाय आप साचे भावे अहंकार हउमै तजै माया सहज नाम सुमावे आप करता करे

अंत गया पछतावई, बिन नावे को साथ न चाले। पुत्र कलत्र माया धोया, दूजे भाई दुख होए। मनमुख जम जोहया जियो, कर कृपा ले हो मलाए। महल हर पाया जियो, सदा रह कर जोड़। प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावै ता हुक्म समावै। हुक्म मन सुख पाया, आन दिन जपत रह दिन राती। सहजे नाम ते आया, नामो नाम मिली वडियाई। नानक नाम मन पावे, कर कृपा लेहो मलाए। महल हर पावे जियो, नासरी महला पंजवा शंत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर दीन दयाल। जिस संग हर गावी है जियो, अमृत हर का नाम। साध संग रावी है जियो, पाज संग साधु एक अरादु। जन्म मरण दुख नासे, तुर कर्म लिखिया साच सिखिया। कट्टी जम की फासे, पै परम नाथे छुट्टी गाठे। जम पंथ मूल ना आवी है, बिनवंत नानक धार कृपा। सदा हर गुण गावी है, ने धरिया धर एक। नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार। सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुखा स्वामी। सरन साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा। पल एक माहे तराया, पूर रहया सर्ब थाई। गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नानक सदा सिमरी। सर्ब दुख कै भंजनो, आप लिए लड़ लाए। कृपा धारिया जियो, मोहे निर्गुण नीच अनाथ। प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी। नीच थापन हारिया, जी जंत सब वस तेरे। सगल तेरी सारिया, आप करता आप भुगता। आप सगल विचारिया, बिनवंत नानक गुण गाए जीवा। हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्स अपार। नाम अमोलै जियो, नित जपह तेरे दास। पुरख अतोलै जियो, संत रसन बूठा आप तूठा। हर रसै सेई मातिया, गुर चरण लागे महाभागे। सदा अन दिन जागिया, सद सदा सिमरतभ्य स्वामी। सास सास गुण बोलई, बिनवंत नानक धूर साधु। नाम प्रभु अमोलई, राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, सनक सनंद महेश समाना। शेख नाग तेरो मर्म ना जाना। संत संगत राम हृदय बसाई, रहाउ हनुमान सर गरुड़ समाना। सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार वेद अर सिमरत पुराना। कमला पत कबला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नाही। पग लग राम रह सरनाही, दिन ते पहर पहर ते घरिया। आप कटै तन सीजै, काल एहेरी फिरै बदक ज्यों। कहो हो कवन बिद कीजै, सो दिन आवन लागा। मात पिता भाई सुत बनता, कहो हो को है काका। रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै, आपा पशु ना बूझै। लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना

ते तप कर बहुर ऐबू क्या मांगू किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहाऊ सुभा राज बिभै बड़ियाई। अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया। इनते कहो कमने सुख पाया।

कर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अदकाई रहाउ बनता सुत देहे गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने तेऊ पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सने तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिन तार मूंड बलाई हमरु करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई बारह योजन सत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी हिन मैं पई पराई दुर्बासा स्यो करत ठगौरी जादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम देओ हर गुण गाय दस बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिट नामो सत्तर दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाछे बहुर ना आमन पावो अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है सीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेहे तज दर्शन पावो इत कर भगत करह जो जन तिन भव सगल चुकाई है कहत नाम देव बाहर क्या परमो यह संजम हर पाई है मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो करंक निसनाद बालहा क्यों मेरा मन रा मैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ ज्यों धरनी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला ज्यों कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले काहू बीथला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीथला पहल पुरिये पुंडरक वना तां के हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसादरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी मह सागरा रहाउ नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना तर्क नाचा प्रमिया चा केसवा बचौनी अये मैये

धन पीवै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा मेरा माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हु ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै हो बल बल जाओ रमैया कारने कारण कमने अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे ते माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बाणी सुजस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो हरसन अमृत राम नाम भाखो मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाओ साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सिंह पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मरारी हर के नाम बिन झूठे सगल पासा।

नाम ठावना जात जात रूप रंग न रेख आदि पुरुषो दार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राख जतर तत्र दिशा।

विरोध जमाल है कि अनंत प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि अग्नि स्वरूप है कि मैं तो भूत है कि मैं तो पता है कि आत्म प्रवाह है कि अचल गणांग है कि मैं तो पांग है मद पार छंद तव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम हर भर या गांज हर नर पर पांज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर या खंड भर नर या मंड अन पव्य नाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल फल मदान अंश जी अंग आसन पंग गुमा पार गात्म केदार जल फल या मांडव देश देश या पांडव जल फल महंत देश देश

निरपनाय गाय गर्भपाय गाय बहुपंजन है अर्गंजन है रपतापन है जप जापन है अकलंकृत है गर्भकृत है कर्ता कर है हरतार है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म वास है जस के जास है कुजंग प्रयात शंभ नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारी नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसिंह तामसिंह शांत रूपे नमो कर्म तत्संग तत्संग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो शुद्ध शुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पौजे नमो पान पाने नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नमो

चंदन गारी। गुंजत गूड गजान से सुंदर हंसत है हज राज हजारी। भूत भवेख भवानी से भूपत गौन गण नहीं जात विचारी। शरी पाद श्री भगवान भजे बन अंत को अंत के दाम सुधारी। तीर्थ नान दयादम दान सुसंजम नियम अनेक सिख है। वेद पुराण देव पुराण जमीन जवान सुदान के देखे। पौन आहार जतिय तार सब शुभ चार हजार के देखा है। श्री भगवान भजन भूपत एक रीवन एक न देखा है। शुद्ध सुपाहा दुरंत दास सासना दुर्जान दलाएंगे। बारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंखा लिना लेंगे। तोर हरीन मरोर वासन माते नंगन मान मलाएंगे। श्री पाद श्री भगवान कृपा बेन त्याग जान दान चलेंगे। वीर पार बड़े बड़े आर बचारे सार की दर बचैया। दूर प्रदेश मलिंद मवासन मत जान के मान मलैया। गाड़े गुड़ान को तोड़न हार सुबात नहीं जग चार लवैया। साहिब श्री सब को सरनाए तो जाच का नेक सो एक दवैया। दान बदे फिरंदन साचर भूत भवैख भगवान जपेंगे। जीव जते जल मैं सल मैं पल ही पल मैं सब साप जपेंगे। गुण प्रतापन वाट जैस तन बापन के वह पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सदर सब अब लोग जपाएंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरात जो अंतर लोग को राज करेंगे। कोट स्नान गजा दिखदान अनेक सो अंदर साज भरेंगे।

संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्ट के हंता तुम पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म भक्तराय काल पाए सिर जीवक तराय काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल योगी सेव कियो वेद राज ब्रह्मा जो सियो जबन काल सब लोक सवारा नमस्कार है दाई हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा श्री गुरु समझे हमारा नमस्कार श्री को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बल कियो गड़गड़ के अंतर की जानत भले बुरे की तीर भया

इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया के कर्म कमाया तुझ श्री राजा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन लग्या सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वस्या पूर्ण।

सदगुरु मिले एंड ग्रेट होई। हे श्रवणो मेरे हो साचा सुन मैनो पठाए, साचा सुन मैनो पठाए। श्री लाए सुनो सतबाणी, जस सुनी मन तन हरिया रसना रस माणी। साचे लख वडाणी ता की गत कही ना जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवा। साचा सुन मैनो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख गाय वाजा पौन जाया वजा वाजा पौन। नौ दुआरे प्रगट किए।

जीवन मुक्त सो अखिया मर जीवा मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर

गावे राजे रानिया बोले अल्पताल लख सकते के मुंदड़े लख सकते के हार गेतन पैया नानका चेतन हो बैठार ज्ञान ना कली कुंडिया कथना करड़ा सार।

ने साल पौड़ सच सब एक तो दिल सजो मिल सत काख ने सतगुरु मैं सतगुरु मैंने सत पाया जिनका हृदय सच वसाया।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण कत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जान पेयो नानक तां का दास है सुन जंदे महला दूजा एक संग सर्व

रात दिन सजी नाले तक पहुंचतिया बमन मटाया कोहे बकरार खाया सब कोई आखा कोई पराना सुतिया की फिर पाया होर नानक तग ना तुटे जे तग होगा जोर महला ना मने पर सुख

मन का सुत को लोग है जेवा सुतकूर अखी सुत पवेखण पर कन्नी सुत कन पे लैत बारी खाए नानक सायद ले बदे जमपुर जय महल सब।

मिया पांडल मिया पांड मंगण मिया हो पांडो हो गया दृष्टि पांडो चला रहा पांड मुआ पांड पालिया पांड हो गया बंधान सो क्यों मंदाया किया जित जो मेरा जान पांडो ही पांडो पजा पांडा बाज न कोई नानक पांडा बाराय को सचासो जित मुखदा सलाया पगल तिचार नानक ते मुखजले कित सचे दरबार को सुख रखे अपना जिस ना ही सुन कर दिया आपे ही लेखा संडिया जरण नहीं अत जग तकायत कार बहन दिया मंदा के समय बाहकरे हो बुझिया मूर्खा नाल लुझिया मूर्खा नाल

आत्मा में डाले लेखा पीड़ छुटा डाले लेखा पीड़ छुटा नानका जो तेल पौड़िया पे ही करना पियो।

केहू बरतै देखो को निर्जात वस्तु दूजी होवे पास साहिब सिख हुकुम में चल है कही बने अरदास कूड़ुक मण कूड़ो होवे नानक सुख वगास महला दूजा नाले आने दुष्ट वडारू सुन पानी

0: ते मेड़ कदू जिनी नाम पे आया गए मुशक तो कहा नानक ते मुख उजले किति चुकी ना। सतगुरु जी साहब जी ने पार कृपा की है अमृत वेले विद्वान दयानंद साहब जी की अल्लाह बाणी जो कीर्तन गायन कीते गए हैं सामने कीते गए हैं रहमत करने भी जिन्होंने आप जी के वर्ग जो लाहे लाने किए हैं आप जी के वर्ग दरबार जहाजियां भरिया हैं इन्होंने गुरमुख ने अपने पावन दरबार से नाम की बात सुखी जीवन अपने वर्ग चलना का प्यार बख्शे वजना जी इतने से अपमान का भी हम वर्ग प्रति प्रवान करो वाहेगुरु जी वाहे।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर समर सुस पावो, कल कलेश तन मह मिटावो। सिमरो जास संभरे, कै नाम देवता गण कानिक। वीर पुराण सिमर सुद अखर।

प्रभु का सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माही समाये, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरन से तनवंते, प्रभु को सिमरन से पतिवंते, प्रभु को सिमरन से जन प्रवान, प्रभु को सिमरन से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरन से भी मोहताजे, प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरन से सुखवासी, प्रभु को सिमरन सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरन से पर उपकारी, प्रभु को सिमरन संसार बलिहारी, प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरन तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरन तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरन तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरन तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरन बस है हर नेरे, संत कृपाते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु का सिमरन कार्य पूरे, प्रभु का सिमरन कहो न चूरे, प्रभु का सिमरन हर गुण बानी, प्रभु का सिमरन सहज समानी, प्रभु का सिमरन नीचले आसन, प्रभु का सिमरन कमल बिरासन, प्रभु का सिमरन अनहद चुनकार, सुर प्रभु सिमरन का अंत ना पार, सिमरन सीजन जिनको ब्रह्मया, नानक तिंजन सर नी पया, हा सिमरन कर भगत प्रगटाए, हा सिमरन लग बेरूपाए, हा सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हा सिमरन नीच चौं कुंट जाते।

जनक मालक जीना हर तन जनक आप रव जीना हर हर जनक ओत स्थानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग किते तरे पार जाते हो हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिदवसै संत प्रताप दुर्द सब नसै संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम से आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति पेके सर्व कंढोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास कर्म भ्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान हो मैं बहु रतना शीर खटाए हो मैं कर राति वर्त नेम कर बहु भांति नहीं तुल राम नाम दी चार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौखंड पृथ्वी फिरै तिर जीवै महा उदार।

साधन निमख निमक का सिर कटावे तो पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम सम सरकश नाही नानक गुरमुख नाम जपत कत पाही मन कामना तीत देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करे दिनस अर रात मन

बहुत सियाणप जम का पहु व्यापै अनख जतन का त्रिशन्ना त्रापै एक अनेक अगन नहीं बुझै कोटो पाव दरगा नहीं सिजै छूटस नाही उब पय आल मोहे व्यापै माया जाल अवर का तुर सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए।

ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी, तुमसे हुए सो आज्ञाकारी, तुमरी गतमर तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक दीन हार प्रव छोड़ कर लग है आन सुआए, नानक कहूँ न सी जई, बिन्ना मैं पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाचे पावा।

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन को टंब सवाया मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रस हसी असल बसरा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या तुह मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव है हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्द को हिरह। मिथ्या नेत्र पेखत परत्य रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर बेकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साखत की आजा साज बिना कह होवत सूचा। बिरसा नाम बिना तन अंध मुख आवत सा कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरसा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरसे सब काम ज्यों किरपन के निरार सदाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कच अवर कमावत मान नहीं पीत मुखों गंड लावत। जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर भेष न काहू भीन। अवर उपदेश आप न

विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सब निधान प्रभु तेरी मया, आपो कृष्णा किन्हू लिया। जित जित लाभ तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछुना हाथ। लोक अगमागार पार ब्रह्म सोए, जो जो कह समुगता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साव जना की अचरज कथा अष्टपदी। साधक संगमुख उजल होत, साध संगमल सगली खोत। साधक संग मिटै अभिमान, साधक संग प्रगटै सो ज्ञान। साधक संग बुझै प्रभु नीरा, साध संग सब होत नबीरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एकु प्रजतन। साधकी महिमा बनै कौन प्राणी, नानक साधकी शोभा प्रभु माहि समानी। साधक संग गोचर मिलै, साधक संग सदा प्रफुल्लै। साधक संग आवै बस पंचा, साध संग मुतरस पुंचा। साध संग हुए सब की रेन, साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कतु तावै, साध संग स्थित मन पावै। साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साधक संग न बीगा पैर। साधक संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नाही हो ताप, साधक संग सजै सव्याप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबहू तावै, साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बसै गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साधक संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उधारै, साधु संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सो देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साधु संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्वथान गम, नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नाही कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग कलुखत हरै, साधक संग नक पर हरै। साधक संग इहा उहा सोहेला, साध संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिस्ता जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पय आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संयोग। साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियान है। साध की उपमा चह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न भाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी क्या दृष्ट समान, जैसे

बालक जो पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र सम्मान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपना है सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी के जन भय नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सौंदरसी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मोटा, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक

ब्रह्म ज्ञानी क्या होए तो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल पला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी क्या एक है रंग, ब्रह्म ज्ञानी क्या बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए अध्याक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब शिक्षा करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त ज्योत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। उर्धार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी नित्या नाही रसना पस, मन में प्रीत रंजन दस। पात्र रूप न पेख नित, सार के टैल संत संग हित। करन न सुने काहू की निंदा, सबसे जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिटिया पर हर, मन की वासना मन से टर। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मजे को ऐसा अप्रस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया से हुए भिन्न। कर्म करत हुए ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचा, केवल भगत की तृण संग्रह।

संगत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मंत्र बिंस सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म सार संग पापा मल होवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टैल कर नित नीत मंथन अर्प विष्णु प्रीत हरके चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावे हो पंडित जो मन प्रभु दै राम नाम आत्म मै सुदै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो ना आवै वेद पुराण समित बूझै मूल सूखम मैं जानै असूल चहु वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साल संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उधार है पत प्रेत मुग्ध पासर कौतार है सर्व रूप का औसत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू ज्योत कितना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नजरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्ज है प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसे जुगत नानक राम दास रब की आज्ञा आत्म हे सावै जीवन मुक्त सूग कहावै तैसा हरक तैसा उस सूग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जुगत साए साई जुगत नानक हो पुरख।

सोई फुन होग। पसरो आप हो अनंत रंग, लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अवनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रवृति, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी। कई कोट वेद के सोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार हैं, कई कोट कब का विचार हैं। कई कोट नव तन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म ने कोर। कई कोट पर दर्भ को हिरा, कई कोट पर दुख न कर। कई कोट माया श्रम माए, कई कोट पर देश प्रमाए। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश को मंडल। कई कोट सस्य सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत धार, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण सीवे। कई कोट जख्य किन्नर पे साच, कई कोट भूत पेत सूकर मृगाच। सबते नेरा सब होते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट वो जोनी फिर है। कई कोट बैठते ही खाहे, कई कोट काल है सक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। जह जय पहाना तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांग है सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट होए अवतार, कई जुगत की नोक विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट की ने बहु भांत, सबते होए प्रभु महे समात। ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभु सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होत आत्म प्रगास। कई कोट तत के बेते, सदा निहार है एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीव है, अमर भय सद सद ही जीव है। कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म

अपने आप बचाए, पर मैं भूला दर्द सावे, निमुख माहे चार कुंट फिरे आवे, हर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, तिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दहत सगटावे, जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा न गणै जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई पुन थियो, कभू ऊंच नीच मह बसै, कभू सोग हर्ष रंग हसै, कभू निंद चिंद व्यवहार, कभू ऊब आकाश पयाल, कभू बेता ब्रह्म बेटा, नानक आप मिलावन हार, कभू नित करै बहु भांत, कभू सोए रहै दिन रात, कभू महाक्रोध विकराल, कभू सर्व की हो तरवाल, कभू हुए बह बड़ राजा, कभू पेखारी नीच का साजा, कभू अपकीरित मह आवै, कभू भला भला कहावै, ज्यों प्रवरा कहते भी रह, गुरप्रसाद नानक सच कह, कभू हुए पंडित करे बख्यान, कभू मोन धारी लावै ध्यान, कभू तट तीरथ स्नान, कभू

ज्यों जल मह जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सत कुरबान। श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया, आपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज अभिमान। सो नरक पाती होत स्वान, जो जानै मैं जो बनवंत। सो होत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै। जन्म मरै बो जोन परमावै, तन पूर्ण का जो करै गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै। नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै, धनवंत आवै कर गर्भावै। तृण समान कर संग न जावै, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस। पल पीतर ताका होए विनाश, सबसे आव जानै बलवंत। किन मैं होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी। धर्म राय तुस करे कुवारी, गुरप्रसाद जा का मिटै अभिमान। सो जन नानक दरगै प्रवान, कोट कर्म करै हो तारे। संपावै सगले बिरतारे, अनकत बसया करे अहंकार। नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै। हर दरगै को कैसी गवै, आपस को जो भला कहावै। जिसे भलाए निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन होए। ओ नागता के निर्मल सोए, जब लग जाने मुझसे कज हुए। तब इसको सुख नाही कोई, जब ही जाने मैं किस करता। सब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत। सब लग नेचर नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए। तब लग धर्म राय दे सजाए, सब कृपा ते बंधन टूटै। गुरप्रसाद नानक हो छूटै, सहस कटेलह को उठतावै। तृप्त न आवै माया पाचै पावै, अनक भोग बिछिया की करै। न तृप्त आवै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै। सुपन मनोरथ बिरसे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख हुए। बड़ भागी किसै प्राप्त हुए, कर्ण करावने आपे आप। सदा सदा नानक हर जाप, कर्ण करावन करने हार। जिसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए। आपे आप प्रभु सोए, जो किसी कीनो सो अपने रंग। सबसे दूर सब हूँ कै संग, बूझे देखे करै विवेक। आप है एक आप है अनेक, मरे न बिनता आवै न जाए। नानक सद ही रहया समाए, आप उपदेश समझाए आप। आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार। सब कछ उसका ओकर नैहार, उससे भिन्न कहो किस हुए। शांत अनंतर एक कैस हुए।

एक ऊपर जिस डन की आशा, जिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागह दूख। जिसको हर पव मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक को किसते डरै। जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत सब बूजया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सुखम सोई असूल। न किस जन्म है न किस मरै, आपन

पूजनीसके असानु जैसा जनावे तैसा नानक जानु नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेश करें एक रंग।

सेवा करत हुए ने कामी, जिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, जिस विषय गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर जिसरे दहर नाओ, अनक बार गुर कौ बल जाओ, सब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंगराता, ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, ऐस से आन पलया न जाइए, नानक ऐसा गुरबिड भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, प्रसत चरण गत निर्मल रीत, केटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोह आत्म पति आने, पूरा गुर अखियोजा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए।

संत जना का निर्मल मंत, एक आसरा कह मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ धावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को निर्वांछ मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करै भली करनी, ता शोभा भज हर की सरनी। तन को पावी रोग न जाए, रोग मिटै हरे औषध लाए। सब निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरग है प्रवान। मन पर बोध हो हर कह नाए, दैद सताव से आवै खाए। ताको बिघन न लागे कोय, चाकर हृदय बस हर सोय। कर काती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भव बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसै बनासी, कहो नानक काटी जम फासी। सत विचार कह जन।

प्रणहारे सिमरत सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चाल तेरे तना तू चाल बटाव है मूर्ख मना सुत मिल को टंब अर बनिता सिंचे कहो तुम कमन सनाता राज रंग माया विसार सिंचे कहो कमन छुटकार अस हसी रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तित बुझे नाम बेगाना नाम विसार नानक पहचाना गुरकी मल तूले ए आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम अहरो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत जत पावो सार भूत सत हर को नाओ चाय सभाय नानक गुन गाओ तेरी उतरस मैल बिन सजाए हों मैं बिसु फैल ओहे अचिंत बसै सुख नाल सास जराल हर नाम संभाल चाढ़ सयानप सगली मना साध संग पावै सत तना हर पूंजी संत करो व्यवहार इहां सुख दर गह जयकार सब निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सा लाहे एक सिमर एको मन आहे।

सर्व समाये। प्रभु भक्त छंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कथा कर्त प्रतपाल, आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जप सो है पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीत अजान, नानक तुमरे सन पुरुष भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोह पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग डे आए, हर के नाम की कथा मन पाई, मोह भोजन का पर संगीत, रसना जपति हर हर नीत, फलि सो कानी शोभा धनवंत, हृदय बस पूरन गुरमंत्र,

तब शिव सगत कहो कित ठाए, जब आपह आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन खत डरै, आपन चलित आप कर नहार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख अपने आसन, चाहे जन्म मरन को कहां विनाशन, जब पूरन करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत ओ चिर प्रभु एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ नरंजना गोचर आगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे, आपन आप ही है चर्जा, नानक आपन रूप आप ही हो प्रजा, यह निर्मल पुरख पुरख पत होता, कह बिन मैल कहो क्या तोता, यह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिदर लगत कहो कीस, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसह भू कमन त्रिपतावै, कर्ण कराम करन हार, नानक करते का नाहे सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, सब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्व कलाया पै प्रवीन, तह वेदक देव कहाँ को चीन, जब आपन आप उधार है,

पाप जह अकल अकेदा भेद समाया ऊहा के सहब आप समाया आपस को आप है आदेश जो गुण का ना ही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपने आप आप पतियारा तह कौन कस है कौन सुन हारा बहु बेअंत ऊंच से ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा जय आप शिव प्रपंच आकार।

अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया श्लोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्तक माहे, अनक रंग नाना दृष्टाहे। नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, देही मह इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तह नाद, कहन न जाई अचज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक ते जन सो जी पाए। सो अंतर सो बार अनंत, कटकट व्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल। बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी वह संतर माहे, चार कुंट दह दिशे समाहे। तिससे भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक शुभ पाओ। वेद प्राण सिमरत में देख, सत्य सूर नक्षत्र में एक। वाणी प्रभु की सबको बोले, आपा डोलना कभू डोले।

हम आए, कहते हुए तो ना ही बुरा, थोड़ा कहो कि न कष करा। आप भला करतु ते अपनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साय सारी सब साच, ओत पोत अपन संग राच, ताकि गतमत कहीं न जाए, सुसर होए तो सोची।

सोए हो धनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया।

अष्टपदे पूरे गुरु का कुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिम रोग गोबिंद मन अंतर की उतरे किंद आस अनित त्याग क्रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर धन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पाए परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित बहु नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल सुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आवत रह लो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अनद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माते नानक उदरे दिन कै साते सन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रव्या मिलाए मिट गए बैर भये सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होए सेव की सेव साजन जाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारे नानक निभी केप हमारी सबकी उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर कीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊच पाए अस्थान बौर न होवै आवन जान हतन खात लै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए केम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कै मद सगल दे उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने इहु निधान जपै मन कोय सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपाते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रपाए साध सन नानक ते आए जिस मन बस

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

0: जीवे रित जप जप जीवे
1: रित जप जप जीवे रित जप जप जीवे
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: रिद जप जप जीवे
1: रिद जप जप जीवे रिद जप जप जीवे
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

रिद जप जप जीवे रिद जप जप जीवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

सतसंग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस शब्द विच उन्हां गुरसिखां दी बात है जिन्हां ते सतगुरु जी की कनेरी नज़र होंदी है, जिन्हां नूं वाहिगुरु खिन पल नहीं विसरदा। ऐसे जन बहुत विरले हन। जिन खिन पल नाम ना विसरै ते जन विरले संसार।

भक्त भंडार करे नानक को खाए नानक को खाए नानक को खाए भक्त भंडार करे नानक को खाए नानक को खाए देख मूल न ले।

0: केड़बोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

अवतार दुर्लभ तही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल फांस अबत लागे।

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਕੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਧਕ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸ਼ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੁਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਥੁਲਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਹੋਜੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾਂ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਨ, ਮੱਛੀ, ਭਵਰਾ, ਭੰਬਟ ਪਤੰਗਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੋਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਚਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ
वाहे गुरु जी, करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री। वाहे गुरु जी, भगत रविदास जी अज दे इस पवित्र शब्द दे अंदर मनुख दे अंदर नू जो खंडाउन वालियां बिरतियां ने ते जिन्ना बिरतियां पिछे ख्यालां पिछे लाके इंसान कई बार अपने आचरण तो अपने चरित्र तो भी तिलक जांदा है, उन्हां बिरतियां दा भगत साहिब जी ने जिक्र किया है। इस विच पांच दोखां दा जिक्र है, पर आपां थोड़ा जिहा विस्तार नाल पिछोकड़ इस देही दी आरंभता तो लैके इस नूं पांच दोख किवें व्यापदे ने ते गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी विच इन्हां तो किवें बचा हो सकदा है, सिर्फ ए ही विचारन दा यतन करांगे। पहली बेनती कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी दे अंदर हजूर सच्चे पातशाह जी ने जदों इस देही दे बंतर दा जिक्र कीता, उत्थे प्रभु दे हुक्म दा जिक्र, परमात्मा वल्लों घले जाण दा जिक्र, जां परमात्मा वल्लों वापर रहे भाणे करके मिली कोई देही दा जिक्र कीता। पर जदों होर विस्तार नाल महाराज जी ने हुक्म तो अगे कि इस दी बंतर एदी खोंद ए किवें कायम होई ते उस संबंधी बाणी विच भगत साहिबां ने गुरु साहिबान जी ने एक गल बड़ी सांझी कीती ते मैं ए अर्ज करनी कि इन्हां दी विचार करदियां एक बेनती है कि अपने अंदर दे टिका नूं बना के मता कोई इन्हां शब्दां दे अर्थ अपने ढंग नाल जां किते शब्दां दे अर्थ करदियां अंदर ख्याल होर पैदा करी जाए। भगत साहिब जी दे बचन ने, गुरु साहिबान दे बचन ने, हजूर ने फरमाया पानी मैला माटी गोरी। इस शरीर दी बंतर तों पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, इस मिट्टी दी रब ने परमात्मा ने एक मनुखा देही पुतली बना दी। ते दो शब्द कहे ने पानी मैला पिता का बिंद, मां दा खून लाल खून, उथे अर्थ यही कीते पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, ए शरीर दी बंतर बनी। तन गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इस शरीर दी जदों गल कीती, भावें असीं हड्डियां दा मिज दा ढांचा कहने हड्डियां दा ढांचा है, पर हजूर ने उत्ते शब्द वरत्या कि असल विच इहदी खोंद सिर्फ एक पानी दी बूंद है। काच कोटन रचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमने, कांच कोटिंग दा मतलब कच दा इक किला, रचंत तोयंग जिस दी रचना तोए दा अर्थ है पानी, रचंत तोयंग महाराज कहने कांच कोटिंग रचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमने, जिस ऊपर लेपन महाराज जी ने खून दा और चमड़ी दा कर दिता। जैत्री की वार विच गुरुदेव दा इसे तरह एक वचन है, रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मजार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक कोर गुबार। उथे भी रक्त ते बिंद दा जिक्र किया गया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इन्हां शब्दां दी व्याख्या लई श्री मान भाई साहिब भाई गुरदास साहिब उन्हां दी रचना विच एक पौड़ी है। भाई गुरदास साहिब दे बचन ने ओ थोड़ा जिहा पौड़ी दी व्याख्या अज दे शब्द दे अर्थ करन वास्ते जरूरी है। उन्हां दा शब्द है कि रक्त बिंद कर निम्या, चित्र चलित्र बचित्र बनाया, गर्भ कुंड विच रखिया, जियो पाए तन साज सुहाया, मुंह अखी दे नक कन हाथ पैर दंद वाल गनाया, दिष्ट शब्द गत सुरत लिव
राग रंग रस परस लुभाया उत्तम कुल उत्तम जन्म रोम रोम गण अंग बनाया बाल बुद्ध मुंह दुध देकर मल मूत्र छूतर विच आया होए स्याणा समझिया करता छड कीते लपटाया गुर पूरे बिन गोया माया। इस पौड़ी नु थोड़ा जा विचार ले भगत रविदास साहब जी दी शब्द की आरंभता वास्ते के पांच दो किवें व्यापदे सीधे शब्द भी आप अर्थ कर सकने। सिर्फ जो गुरमत की रोशनी ने कहा भी तन की बनतर एक किवें वजूद बनता है ते केड़ी केड़ी शक्ति केड़ी केड़ी ताकत इन्हां इंद्रियां राही इस दे अंदर व्यापदी है। भाई गुरदास साहब के बचन ने रकत बिंद कर निमिया एदी उपज खोई। अगे वह कहिंदे ने चित्र चलित्र विचित्र बनाया उस परिपूर्ण परमात्मा ने पानी की इस बूंद तो एक चित्र दर से तस्वीर बना दिती पर यह तस्वीर नरजिंद नहीं। इनू बड़ा विचित्र हैरान कुन ए परमात्मा ने अपनी बख्श चुका दिती रकत बिंद कर निमिया चित्र चलित्र विचित्र बनाया ये अगे कहिंदे गर्भ कुंड विच रखिया इस नू अग दे कुंड विच परिपूर्ण परमात्मा ने बचाया जियो पाए उसने एदे विच जिंद पा के जीव टिका के पिंड नू छाज दिता। कह रहे ने कि गर्भ कुंड विच रखिया जियो पाए तन साज सुहाया उस परमात्मा ने इस तन विच जियो टिका दिता ते इस तन नू इस ढंग दे नाल सजाया इनू सवारिया इनू शिंगारिया। असी सुखमनी साहिब विच भी तन गुरु अर्जुन साहब जी का पदा पढ़ने हां कि रमैया के गुण चेत पुरानी कवल मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया। इतने तीन शब्द ने साजिया सवारिया ते तीसरा शब्द कह शिंगारिया। साजन का अर्थ एदी होंद एदी सृजना की पैदाइश की फिर उन्हें अगली कृपा की कि साजन तो बाद इनू सवारिया सवारिया का अर्थ पूरे दे पूरे तन के जेड़े इंद्रे ने इन्हां थां पर थां परमात्मा ने सवार के ला दिता। एक एक नाड़ी एक एक हड्डी एक एक बंदे की बरीक तो बरीक सूक्ष्म नाड़ी भी परमात्मा ने सवार के लाई है। महाराज कहने फिर कला सवारिया नहीं इन्हें कि उन्हें नाड़ियां पैदा कीतियां खड्डियां बना दित्तियां मिज बनाई उन्हें ढांचा खुला नहीं कढ़िया। अगे महाराज जी ने कहा उन्हें साजिया सवारिया ते अगली कृपा कीती शिंगारिया उन्हें सब कुछ बना के एदे उत्ते चन तन उपर चमड़ी का लेपन कर दिता बंदे दे सारे तन नूं ढाके नूं शिंगार कर दिता। इनू भाई गुरदास साहब थोड़ा जिहा व्याख्या नाल कहिंदे कहिंदे जियो पाए उन्हें जिंद पा के इस पिंड नूं सवार दिता कि रकत बिंद कर निमिया चित्र चलित्र विचित्र बनाया गर्भ कुंड विच रखिया जियो पाए तन साज सुहाया ते जदो उन्हें तन सुहाया अगे कहिंदे मूह अखी नक कन हथ उन्हें शरीर सिरजन लग्या सवार लग्या मूह बनाया। मैं आप सोचोगे भी पंज दोखां दी गल ते आपां शरीर दी बंतर दी गल क्यों कर रहे हैं क्योंकि जिन्नी देर तक इस गुरबाणी विचों इस बंतर दे असी ढांचे की बनतर नूं नहीं पढ़ांगे समझ किवें पैगी किवें साडे इंद्रे जिहड़े ने बाहर मुखी प्रवृत्त हुंदे। उह कहिंदे ने मूह अखी उसने मूह अखां नक कन्न दंद ते उहनां ते शब्द शिंगार विच साडे केस वी लै मूह अखी दे हथ कन्न उह सब कुछ बना के भाई साहिब कहिंदे ने कि परमात्मा ने कृपा कीती रक्त बिंद कर निमिया चित्र चलित्र विचित्र बनाया गर्भ कुंड विच रखिया जियो पाए तन साल चुहाया मूह अखी दे नक कन्न हथ पैर दंद वाल गणाया ते अगले उन्हां दे बचन ने दृष्ट शब्द गत सुरत लिव इनू थोड़ा जा समझियो आ मूह अख नक कन्न ये तां सारे न्याणे तो न्याणा भी समझदा है। दृष्ट उन्हें केवल अखां नहीं पैदा कीतियां इन्हां अखां दे अंदर अखां दे शरीर विच उन्हें एक जोत चका दिती जिस जोत नूं परमात्मा ने वेखण दी ताकत दे दिती उन्हूं आपां दृष्ट कहिंदे हां। दूसरा शब्द उन्हां वरत्या दृष्ट शब्द शब्द दा अर्थ कन्न केवल पैदा नहीं कीते
परमात्मा ने कन्ना विच वो ताकत पैदा कर दी जेड़ी बंदे दी सरोत नू सुन दी शक्ति आपां कहने का उस तो अगे शब्द आया गत। हुण गत दे अर्थ की ने कि देखो साडे तन नू जदों कोई स्पर्श करदा है ते साडे पूरे तन दे विच खलचल पैदा हो जांदी है। शरीर दे किसे किसे नू भी कोई स्पर्श करे ते इको दम तन विच खलचल पैदा हुंदी है। परमात्मा ने अंदर दृष्टि अंदर शब्द की सरोत ते इस तन विच स्पर्शता की ताकत भी पैदा कर दिती। दृष्ट शब्द गत सुरत लिव उन्हें एक सुरत पैदा की सानू अंदर की सोझी ली उन्हें लिव पैदा की राग रंग रस परस लुभाया उन्हें जेड़िया ये ताकत बनाईया दृष्ट की शब्द की गत की सुरत की लिव की उन्हें कन्ना विच राग सुन की ताकत बनाई अखा विच देखन की ताकत पैदा कर दिती। कहन लगे चमड़ी विच उन्हें स्पर्शता की ताकत पैदा की ए इंद्रे बना के इन्हां अंदर एक एक उन्हें अपनी ताकत अपना ओ बख्श चुका दिती। कह लेने भाई गुरदास जी राग रंग रस परस लुभाया उत्तम कुल बंदे दी कुल सारिया जूना विचो उत्तम है। उत्तम जन्म मनुखा जन्म भी उत्तम है। रोम रोम गण अंग बनाया उन्हें एक एक रोम रोम गिण के बंदे दा पूरे दा पूरा तन ते ए अंग ढांचा तैयार कर दिता। रोम रोम गण अंग बनाया बाल बुद्ध जदो बचपन है मुंह दुध देकर मल मूत्र सूत्र विच आया उन्हें पूरे इंद्रे तैयार किते होए सियाणा समझिया करता छड कीते लपटाया जिस परमात्मा ने यह दे दिती सी जिदन बंदे नू चार अखर आ गए सियाणप आ गई उदन सच एवे देण वाले दाते नू भुला दिता केवल उसकी दिती हुई दात नू ही पकड़ के बैठ गया। होए सियाणा समझिया करता छड कीते लपटाया ते अगे भाई साहब कहिंदे ने गुर पूरे बिन मोहिया माया इनू माया ने छल लिया। होर मैं एक बेनती करा देखो मेडिकल साइंस अपने ढंग नाल इनू एक्सप्लेन करेगी पर असी जो गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द की रोशनी च देखांगे क्योंकि शब्द जुगो जुग अटल है असी उस शब्द के सिद्धांत नू समझदे होए जो मनुख दे शरीर का जिक्र चलता है अंगा का जिक्र चलता है दुखा का जिक्र चलता है वकारिया का जिक्र चलता है तो उस बंतर नू जरूर देखना पैंदा। इसे तरह का एक बचन है राम कली राज मेरा ख्याल मैं कोई साल पहला उस शब्द के इतने अर्थ किए सर उस शब्द शुरू होंगे ईंधन ते बसंतर भाग है माटी को जल दहदिच त्याग है ऊपर चरण तले आकाश घट में कीनो सिंध प्रगाश प्रथ में माखन पछ है दूध मैलो कीनो साबन सूद। यह शब्द गुरु अर्जुन देव जी का राम कली राग विच है। इहदे अर्थ पहला अखरी ने फिर इस शब्द के अखरां के अर्थां तो बाद इहदे भाव अर्थ ने कोई क्योंकि जो अखरी अर्थ करांगे हो सकता उहदे विच मुकम्मल समझ ना पाए। अखरी अर्थ ने ईंधन ते बसंतर भाग है ईंधन का अर्थ है बालन जां ओ चीज जिनू अग बड़ी जल्दी लगती हो। कहन लगे जेड़ी लकड़ है ईंधन है जलन वालिया चीजा ने सड़न वालिया चीजा ने उन्हां दे नेड़े अग आ जाए ईंधन दा अर्थ लकड़। पर देखो सुक्की लकड़ होवे ते अग दी चिंगारी लाइए एक बत्ती आपां अग दी एक दिया सलाई दी बत्ती ला दईए एक माचिस दी तीली ला दईए ते की अग कदी कहिंदी है कि मेरे कोल इन्नी समर्था नहीं मैं इस लकड़ नू साड़ा। अग दा सुभाग है जिथे भी लगेगी वह साड़ेगी जलन वाली चीज नू वह तन नू साड़दी है लकड़ नू साड़दी है कागज नू साड़दी है बंदे दे बने कोई घर नू साड़दी है। पर तन गुरु अर्जुन साहब कहिंदे देख परमात्मा दी खेड कि एक लकड़ एक जलन वाली चीज पई है उहदे चार चुफेरे अग मचदी पई है पर परमात्मा ने ऐसी अद्भुत खेड रची कि अग दी ताकत नहीं कि उस जलन वाली चीज नू साड़ सके। ईंधन ते बसंतर भाग है पहले सिर्फ अर्थ ने अखरी माटी को जल दह दिस त्याग है हुण मिट्टी का एक छोटा जिहा टुकड़ा पिया होवे ते उस दे चार चुफेरे नहीं उहदे दसे पासे पानी होवे चौगिरदे भी ते उत्ते नीचे हर पासे पानी। हुण जेड़ा मिट्टी कच्ची मिट्टी का एक ढेला एक टुकड़ा पिया है ते पानी का सुभाग है उस मिट्टी नू गाल दे
पर महाराज कहने दसे पासे पानी, पर पानी की समर्था नहीं कि इस मिट्टी के टुकड़े नू ओ गाल सके। अगला महाराज जी ने वचन किया, कह लगे उस तो बाद ऊपर चरण पैर ऊपर ने तले आकाश, पर गगन जेड़ा ओ धरती वाले पासे है। घट में किनो सिंध प्रगाश, घट का अर्थ छोटा जा घड़ा, सिंध का अर्थ समुंदर, समुंदर का अर्थ असीम, प्रगाश का अर्थ अपनी चेतना टिका देनी कि पैर ऊपर ने गगन थले वे ते निचे जाए एक भांडे विच परमात्मा ने अपना प्रगाश अपनी जिंदगी दी चेतना कह लो कि जो जीवन दी चेतना है वह परमात्मा ने निके जे भांडे भी टिका दिती। प्रथम है माखन, पहला परमात्मा ने मक्खन संग्रह किया, मक्खन तो बाद उन्हें दुध पैदा कर दिता। प्रथम है माखन, पांचा है दूध, बाद विच दुध पैदा किया। पर उंज जे आपां दुनियावी तौर से देखिए दुध विचों ता जमा के मक्खन दही विचों निकलदा है, पर कदी किते नहीं कहा कि जमा होया दुध जेड़ा है दही वो भी दुध भी तब्दील हो सकता है। प्रथम है माखन, पाछ है दूध, मैलो कीनो साबण सूद, जेड़ा अत दा मैला है परमात्मा ने कृपा की उन्हू दुध वर्गा साबण नाल जिवें धो के बंदा कपड़ा चिट्टा करदा इस तरह बिलकुल श्वेत चिट्टा कर दिता। अखरी अर्थ ए ने, पर इहदे भाव अर्थां दा संबंध भी साडे तन दी बनतर नाल है, शरीर दे ढांचे नाल है। ईंधन ते बसंतर भागें, धन गुरु अर्जुन साहब कहिंदे शरीर एक सड़न वाला पदार्थ है, इन्हें सड़ना है, चमड़ी कह लो, केस कह लो, हड्डियां कह लो। कबीर साहब ने अपनी रचना च कहा, मैं कल यो कोट कीता सी, खाड जरै ज्यू लाकरी, केस जरै ज्यू घास, ए जग जलता देख कै भयो कबीर उदास। बॉडी सड़ेगी, ए चमड़ी सड़ेगी, हड्डियां सड़नगियां, पर हजूर कहने देखो ईंधन ते बसंतर भागें, जदों इस शरीर दी बंतर बन रही है, एदा ढांचा तैयार हो रहा है, खड्डियां ने मास ने मिज ने छे महीने विच मुकम्मल तन बन गया, पर जिस थां ते बन रहा है उहदे चार चवेरे आगे परमात्मा ने इन्ना कु तरस किया इस निक्के जे बालन दे टुकड़े नूं, इस लकड़ नूं उस बलदी हुई अग विच उहने तत्ती वाह नहीं लगन दित्ती। ईंधन ते बसंतर भागै, दूर जांदी है आगे दे तों। इनू जे गुरुदेव की बाणी च होर देखिए ते आपां पढ़ने आ, मात गर्भ में आपन सिमरन दे उस अग तो बचाया, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे, जां गुरुदेव दे बचन आनंद साहिब च कि माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिय, मनो क्यों विसारिय एवड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। अगन में कला भोजन नहीं, वह बना भी रहा है, बचा भी रहा है। धन गुरु कलगीधर जी के बचन ने, और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे, वो चमड़ी के पर्दे की अग विच भी परमात्मा बचा रहा है। गुरु अर्जन साहब कहते ईंधन ते बसंतर भाग है, अग्नि इन साड़ दी जिसम, माटी को जल दै बिच त्याग है, खैता ए मिट्टी का एक पुतला। महाराज कहते इस मिट्टी के पुतले दे, इस मिट्टी के वजूद के चार चवेरे अग ते दसे पासे पानी। हुण देखो अपना तन, अज आपां दो चार पांच सात घंटे किते पानी च कम करिए ते साडे हथां दीआं उंगलियां उन्हां दा मास चिट्टा होके भुरन लग पैंदा है। पानी विच ज्यादा समा रहांगे ते मास ऐसा ऐसा जिहड़ा ओह चिट्टा हुंदा गल लग पैंदा है। पर महाराज कहिंदे ने कि हालांकि इह चमड़ी हुण दिन ब दिन कठोर भी हो गई, सख्त हो गई, पर एक बच्चे की चमड़ी तो अत की कोमल है जिदा अजे जन्म ही नहीं होया। जे सख्त चमड़ी कोई समा पानी च रखिए तो उस चमड़ी के अंदर तब्दीली आ जाती है, वो भी भुरन लग पैंदी है, गल लग पैंदी है। पर महाराज कहिंदे ने कि देख ए मिट्टी का कोमल जिहा इक टुकड़ा ते इहदे दसे पासे पानी, परमात्मा ने उस पानी विच ना इहनू खुरन दिता ते ना इहनू गल दिता। ईंधन ते बसंतर भागें, माटी को जल दै दिस त्यागें, ऊपर चरण पैर ऊपर ने तले आकाश, आकाश दर ते गगन, कि गगन दा अर्थ होर कर लिए ते साडा अथिर, ऊपर चरण तले आकाश, घट में कीनो
सिंध प्रकाश उस परमात्मा ने निके जै इस सैल विच निकी जी जीव आत्मा कह लो जी विच अपनी सत्या टिका दिती। घड़े विच उस समुंदर ने प्रवेश कर गया। घट में किनो सिंध प्रकाश प्रथम है माखन, अजे मनुख का जन्म नहीं होया, पर परमात्मा नू एदी रोजी दा एदी रोटी दा प्रबंध ज्यादा है। सच एवे कि जदों बंदा खुद रोटी की चिंता करदा है उदों कई बार भुखा मरदा है, ते जदों एदे कोल जबान नहीं, खत नहीं, पैर नहीं, कोई चीज तां दा शरीर दा अंग बाहर मुखी ज्यादा काम नहीं करदा, उदों परमात्मा एदे जन्म तो पहला रोजी दे दिंदा। सतगुरु ने बाणी विच कहा, कहन लगे पहलों देता है रिजक समा, पिछों देता है जंतु उपाह। पहला रिजक दिता, बाद भी जीव पैदा किया। इतने महाराज कहते प्रथम है माखन, जो बच्चे की फीड, जो बच्चे की खुराक है। अजे जन्म विच कुछ समा पिया है, पर परमात्मा ने मां के सीने विच